मैं आज वेर इज कविता जी प्लीज कम. यस नाउ वी आर इंटरिंग हर फील्ड दैट्स व्हाई प्लीज कम प्लीज बी विद अस कम ऑन कम ऑन कम क्लोजर गिव हर वन माइक. चलो बेटा ये तुम्हारे तुम्हारे फील्ड में घुस गए ना तो मैं याद आया कि कविता जी यहाँ बैठी है.